0: चौवालिस तीस अड़चालिस उनासी र अन्ठानब्बे चौसठी एघार शून्य शून्य एघार अन्ठानब्बे चौसठी एघार शून्य शून्य एघार।
1: यो हो हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ज।

आँखा शिविर बस्ने सम्बन्धी सूचना। नेपाल आँखा कार्यक्रम तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठान लाइन्स क्लब अफ दुलोखा तथा दुलोखा।

हमरे फंदामा देह पछी तिमिता हमरे फंदामा देह पछी तिमिता हमरे फंदामा देह पछी तिमिता।